अच्छी पीली खराब पीली थी आग मिसाल हबाब पीली। आदत है अब तो नशा ना कैफ, पानी न पिया शराब पीली।